0: एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में आज की पहली अपडेट में मेरे साथ हैं साक्षी मांडवाल और मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी। आज की सुबह बेहद सुहानी कह सकते हैं, बेहद खूबसूरत सुबह कह सकते हैं। भारत ने 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। अभी अभी जस्ट जब हम आपसे जुड़े हैं उसी वक्त गोल्फ में भारत को गोल्ड मेडल मिला है। जी हाँ, भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्फ का गोल्ड मेडल जीत लिया है और वो भी जीता है किस खिलाड़ी ने, प्रणवी ने जीता है। जी हाँ, प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया। एशियन गेम्स से पहले पदक की प्रबल दावेदारों में उनका नाम हालांकि नहीं शुमार था, लेकिन प्रणवी ने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंकाते हुए भारत के लिए महिला गोल्फ का पहला व्यक्तिगत जो सोना है, गोल्ड है एशियन गेम्स का, वो दिला दिया। ये उपलब्धि भारतीय गोल्फ के इतिहास में एक नया अध्याय कह सकते हैं। बिल्कुल साक्षी,
1: जरूर शाहिद। एंड अपने श्रोताओं को हम ये भी बता दें कि इससे पहले जो गोल्फ के अंदर इंडिविजुअल गोल्ड आया था वो शिव कपूर लाए थे 2002 में। तो यानी 24 साल का इंतजार आज जाकर समाप्त तो होता है विद दिस ब्यूटिफुल गोल्ड दैट प्रणवी उर्स हैज बॉट फॉर द कंट्री। एंड अलॉन्ग विद दैट प्रणवी, अदिति एंड दीक्षा ऑल्सो क्लिंच्ड द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स टीम इवेंट इन गोल्फ। चलिए आपको दूसरी तरफ भी लेकर चलते हैं, दूसरी खबर की तरफ जो आने वाली है आर्चरी की दुनिया से, जहाँ आज हिस्ट्री बन गई। कुमकुन महोद has created history. She became the first Indian women's recurve archer to win a gold medal at the Asian Games. जी हाँ, पहली महिला भारतीय आर्चर जिन्होंने गोल्ड दिलवाया एशियन गेम्स में भारत को। In a thrilling final, she beat her Korean opponent Oh Hee-jin via a shoot-off. India's final day at the Asian Games 2026 begins on a golden note. She had an extraordinary debut campaign for India at the Asian Games. She finished with 2 golds and 1 silver medal. दोस्तों मैं बात कर रही हूँ कुमकुम महोद की। And as part of the women's team, she won the first gold medal for India in this event. Her mixed team silver was also the first medal for India in that category. Ultimately, she became the first Indian woman to win a gold medal in a recurve इंडिविजुअल इवेंट। शायद
0: जी बिल्कुल, बात करते हैं कुश्ती की, जहां मैट पर उठा पटक जारी है। 2 पहलवान जहां बाहर हो गए, वही 3 पहलवान अभी भी मेडल की रेस में बने हैं। भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने पुरुषों की फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए कजाकिस्तान के नूरदान एतानवो को 12-1 के बड़े अंतर से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। इससे पहले अमन सहरावत ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान के यामातो ओगावा को 20-9 से हराया था। मुकाबले के पहले हाफ में अमन 8-9 से पीछे थे, लेकिन दूसरे हाफ में उन्होंने जबरदस्त पलटवार करते हुए 12 अंक जुटाए और तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर मुकाबला अपने नाम कर लिया। उधर अंतिम पंगाल, भारत की सनसनी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उज़्बेकिस्तान की एसबोनसीवा साकिब जमाल को 8-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। अंतिम ने इससे पहले आज की अपनी पहली जो प्री क्वार्टर फाइनल कुश्ती है उसमें कजाकिस्तान की सुग्याला ओमरीबेकोवा को 9-0 से शिकस्त दी थी, जबकि 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत के सागर जगलान को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हार कर सामना करना पड़ा। वहीं सागर को ईरानी पहलवान जो मौजूदा चैंपियन है योनेस इमागोचोई ने 10-0 से हराया था। अब सागर उम्मीद करेंगे कि उनके जो विरोधी पहलवान है वो फाइनल पहुंचे और रेपेचेस खेलें। उधर 57 किलोग्राम महिला वर्ग में जिस तरह मनीषा अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला हार गई, हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उन्होंने शानदार तरीके से जीत दर्ज की थी।
1: जी, और टैक्वेंडो में आपको बता दें कि कशिश मलिक हैज बोर्ड आउट ऑफ द वुमेन्स 56 kg राउंड ऑफ 16 इवेंट एट द एशियन गेम्स। शी वाज डिफीटेड बाय किम यूजिन ऑफ साउथ कोरिया इन दिस राउंड। ज्योति राज यादव नाउ रिमेन्स इंडियाज ओनली होप इन द स्पोर्ट एज शी गेट्स रेडी फॉर अ राउंड ऑफ 16 मैच। और इन द सेमीफाइनल उनका मुकाबला हुआ जू जिंगी ऑफ चाइना से। वही वुमेन्स 67 kg राउंड ऑफ 16 में ज्योति यादव, जिनका मुकाबला हुआ कन्नलक चुअन चुलिन से, वहां पर भी ज्योति यादव को हार का सामना करना पड़ा 15-4, 15-2 से, यानी 0-2 से शी लॉस्ट दैट राउंड। शी हैज दस बीन नॉक्ड आउट एंड इंडियाज कैंपेन इन द स्पोर्ट ऑल्सो एंडेड विद दिस लॉस।
0: अगली खबर की तरफ चलूं, उससे पहले बता दूं कि दीपक पुनिया भी अभी भी बने हुए। उन्होंने अपना पहला मुकाबला जीता था, वो सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। वहीं ताइक्वांडो की बात करते हैं, महिलाओं के 67 किलोग्राम भार वर्ग के राउंड ऑफ 16 में मुकाबला जो था वो ज्योति का, जैसा कि अभी साक्षी

0: ने बताया उन्होंने जीत हासिल की है। जी हाँ, आज की जो शुरुआत हुई साक्षी बेहद शानदार रही, दो गोल्ड आए। वहीं कुश्ती में तीन पहलवान अभी भी पदक की तरफ बढ़े हैं, यानी आने वाला जो अगला घंटा वो भी अब बेहद खास होने वाला है।
1: जी एंड अ वेरी क्विक रैप अप ऑन हाउ द मेडल टेबल प्रेजेंटली स्टैंड्स एट द लास्ट डे ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स। भारत इस समय है पांचवें स्थान पर आज दिन की शुरुआत में। कुल उसके पास है 77 मेडल्स, जिसमें 17 गोल्ड, 25 सिल्वर, 35 ब्रॉन्ज है। लेट्स सी हाउ द Day ends for India. For now, this is me Sakshi Mandwal and Mohammad Shahid Azmi signing off. हम आपके साथ एक बार फिर से सुबह के 10:30 बजे जुड़ेंगे with all the live updates and also an update on the India-Pakistan final cricket match all set to begin.
2: Asian Games 2026 Aichi Nagoya.
3: நேயர்கள், இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது ஆசிய விளையாட்டு

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल। मेरे साथ दोस्तों इस वक्त यहाँ पर मौजूद है मोहम्मद शाहिद आजमी और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए सुबह के 10:30 बजे के लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026 के आज

0: जे आखिरी दिन ऑफिशियली अगर देखा जाए तो खेलों का, खास तौर से इंडियन रिप्रेजेंटेशन का, व्हेन इट कम्स इन द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026, बिकॉज टुमारो द एशियन गेम्स कम्स टू इट्स फॉर्मल ऑफिशियल क्लोजर ऑल्सो. बट अगर आज की सुबह की बात करें तो बहुत अच्छी शुरुआत आज भारतीय खिलाड़ियों ने दी, खासतौर से गोल्फ को सबसे पहले मैं बताती हूँ, जहाँ प्रणवी उर्ज ने आज हिस्ट्री बना दी बाय क्लिंचिंग द गोल्ड फॉर इंडिया एट द एशियन गेम्स 2026. प्रणवी, अदिति एंड दीक्षा, द एंटायर टीम ऑल्सो देन वेंट ऑन टू गेट द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स टीम इवेंट इन गोल्फ. नो इंडियन हैज एवर वन एन इंडिविजुअल गोल्ड इन गोल्फ सिंस शिव कपूर डिड दैट इन 2002. यानी 24 साल के इंतजार के बाद आज जाकर वो इंतजार समाप्त हुआ एक इंडिविजुअल गोल्ड का गोल्फ में, जो प्रणवी उर्स भारत के लिए एशियन गेम्स में लेकर आई. इसके साथ आपको ये भी बताएं, प्रणवी उर्स हेल्ड हर नर्व्स टू विन द वुमेन्स इंडिविजुअल गोल्ड मेडल, फिनिशिंग द 4 राउंड कॉम्पिटिशन एट 15 अंडर पार. शी मेड पार ऑन द फाइनल होल एज इट सिंगापुर शैनन टैन एंड चाइनाज यिन रोनिंग हु फिनिश्ड ऑन 14 अंडर टू शेयर द सिल्वर मेडल. अदिति अशोक एंड दीक्षा डागर सेलिब्रेटेड बाई डाउजिंग प्रणवी विद वॉटर ऑन द कोर्स आफ्टर अ मेमोरेबल विक्ट्री.
1: जी, अब एक और अच्छी खबर श्रोताओं को बताएं, नागोया में भारत की 70 साल की तीरंदाज कुमकुम अनिल मोहोद ने आज ऐसा निशाना साधा कि इतिहास बन गया. एशियन गेम्स में पहली बार किसी भारतीय महिला ने रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है. कुमकुम ने रोमांचक फाइनल मुकाबले में कोरिया की येजिन ओह को 6-5 से हराया. मुकाबला इतना करीबी रहा कि फैसला शूटआउट में हुआ, जहां कुमकुम ने 10-8 से बाजी मारकर सोना अपने नाम किया. स्कोर लाइन की बात कर लेते हैं तो कुमकुम ने 27-29, 29-29, 30-29, 27-28, 30-28 और शूटआउट में 10-8 से मुकाबला अपने नाम कर लिया. और यह कुमकुम का इस एशियन गेम्स में तीसरा पदक है. महिला टीम रिकर्व में स्वर्ण जबकि मिश्रित टीम में रजत पदक, अब व्यक्तिगत में स्वर्ण पदक हासिल कर लिया. 17 साल की कुमकुम का यह एशियन गेम्स का जो पदक है, उन्हें LA यानी लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट भी दिला गया है.
0: Right, and now a quick update on cricket, where the India versus Pakistan gold medal match is underway currently. India won the toss today and chose to bat first. Batting, India so far has put, or rather made, 75 runs for the loss of 2 wickets in 5.2 overs, the current run rate being 14.06 per over. India lost 2 quick early wickets of Vaibhav Suryavanshi at 15 and Sanju Samson at just 2 runs, but Abhishek Sharma, who is presently on 46 and 16 balls, and Shreyas Iyer, who has just come onto the ground and has made 3 runs in 4 balls, have been able to solidify and give India a steady start and momentum. Also, Abhishek Sharma presently is just 4 short of his half century. India definitely in a commanding position in the 6th over as of now in this match.
1: कुश्ती की बात कर लेते हैं. साक्षी, कुश्ती के अखाड़े से भारत के लिए शानदार खबर आई है. भारतीय पहलवानों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 2 वर्ग के फाइनल में जगह बना ली, जबकि 2 पहलवान कांस्य पदक के लिए मुकाबला करेंगे. महिला 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल में अंतिम पंघाल ने शानदार वापसी करते हुए फाइनल में जगह बनाई. सेमीफाइनल मुकाबले में अंतिम शुरुआत में 0-1 से पीछे चल रही थी, लेकिन उन्होंने जबरदस्त पलटवार करते हुए कुछ ही सेकंड में 6-1 कर दिया और इस शानदार जीत के साथ अंतिम ने अपना पदक पक्का कर लिया. अब वो स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेंगे. वहीं अमन सहरावत, अपनी ख्याति के अनुसार उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है. 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में सेमीफाइनल में कमाल की वापसी करते हुए फाइनल का टिकट उन्होंने हासिल किया. ताजिकिस्तान के अयाला बोलोस्क्यूकी के खिलाफ अमन पहले पीरियड में 2-6 से पीछे थे, लेकिन दूसरे पीरियड में भारतीय पहलवान ने ऐसा पलटवार किया कि मुकाबले का रुख पूरी तरह से बदल दिया. अमन ने दूसरे पीरियड में 12 अंक बटोरे और आखिर में मुकाबला 14-8 से जीत लिया. उधर सागर जगलान ने शानदार जीत दर्ज की और पुरुषों के 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल के रेपचेज मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए अब कांस्य पदक के लिए मुकाबला खेलेंगे. यहां पर इन्होंने 7-3 से जीत दर्ज कर ली. लेकिन एक और मुकाबले की बात कर लेते हैं. 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल में दीपक पुनिया को सेमीफाइनल में करीबी मुकाबले में हार मिली. उज्बेकिस्तान के शोर्डेट्स के खिलाफ 9-8 से उन्होंने जो 8-9 से शिकस्त मिली थी, उसके बाद अब वो ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला करेंगे.
0: Right, and a quick update on the medal table. Presently, India is on the fifth position with a total of 79 medals, जिसमें 18 gold, 26 silver और 35 bronze medal हैं. जी हाँ, एक और gold medal भारत अपने नाम अभी कर चुका है, इसलिए हमारी position medal table पर अब 5वीं हो चुकी है. देखना होगा कि आज दिन की समाप्ति तक भारत किस प्रकार से एशियन गेम 2026 में अपने खेलों के इस सफर की समाप्ति करता है और मेडल टेबल पर भारत कहां पर जगह गाएगा. फिलहाल के लिए मुझे साक्षी मांडवाल और मोहम्मद शाहिद आजमी को दीजिए इजाजत. हम आपसे दोबारा एक बार सुबह 11:30 जुड़ेंगे विद ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स.
2: एशियन गेम्स 2026

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द लाइव अपडेट ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। दोस्तों मैं हूं साक्षी मांडवाल, मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद आजमी और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए इस वक्त के सबसे अच्छे अपडेट्स, बड़े अपडेट्स, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मुकाबले की। द T20 मैच दैट इज प्रेजेंटली ऑन फॉर द गोल्ड मेडल, इंडिया वन द टॉस, डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने एक बहुत ही विशाल स्कोर 211 का 20 ओवर में बनाया फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, जिसमें दो बल्लेबाजों की बहुत अहम कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे। उसमें एक थे अभिषेक शर्मा हु मेड 61 एंड 28 बॉल्स विच इंक्लूड 3 4 7 6, एंड द अदर वन वाज ईशान किशन, माय अपोलॉजीज, द अदर वन वाज तिलक वर्मा हु मेड 51 एंड 22 बॉल्स। ईशान किशन की भी हम कह सकते हैं साझेदारी जो रही तिलक वर्मा के साथ वो बहुत ज़रूरी रही, क्योंकि उसी ने बूस्ट दिया तिलक वर्मा को हाफ सेंचुरी बनाने के लिए और साथ ही साथ भारत को एक बहुत ही सॉलिड टोटल पर फिनिश कराने के लिए। बदले में हमने देखा जब पाकिस्तान अभी बल्लेबाजी कर

0: उतरी है तो उन्होंने अपने निर्धारित 20 ओवरों में से 8 ओवर हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान ने सिर्फ 51 रन अभी तक बनाए हैं और 3 विकेट उनके जा चुके हैं। एंड वी कैन से दैट इट इज़ द अक्षर पटेल शो दैट हैज़ बीन सो फार ऑन, क्योंकि साहिबजादा परान को अक्षर पटेल ने कैच पकड़ के आउट किया वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर, माँ सदाकत भी आउट हुए तो अक्षर पटेल की गेंद पर हुए, उस्मान खान भी जो इनके विकेट कीपर है उनको भी अक्षर पटेल ने ही आउट किया। तो एक तरीके से बापू शो इज़ ऑन राइट नाउ।
1: जी बिल्कुल, क्रिकेट में हम बिल्कुल गोल्ड मेडल के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन एक गोल्ड मेडल की बात कर लेते हैं जो सुबह आया। प्रणवी उर्स ने एशियन गेम्स में इतिहास रचते हुए महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले में स्वर्ण पदक जीत लिया। जी हाँ, 23 साल की प्रणवी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बनी है। प्रणवी ने 15 अंडर 265 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने आखिरी होल पर शानदार संयम दिखाते हुए पार खेला और सिंगापुर की शैनन सुआन टिन टैन तथा चीन की इन रुंग को एक शॉट पीछे छोड़ दिया। इसके बाद महिला टीम स्पर्धा में भी भारत ने रजत पदक अपने नाम किया। प्रणवी उर्स, अदिति अशोक और दीक्षा डागर की भारतीय टीम ने 4 राउंड में कुल 14 अंडर 546 का स्कोर किया। चीन ने 22 अंडर 538 के साथ स्वर्ण और चीनी ताइपे ने 10 अंडर 550 के साथ कांस्य पदक जीता। वहीं पुरुषों की बात कर लेते हैं, वीर अहलावत छठे स्थान पर चल रहे हैं।
0: जी आश्री रिकर्व में भी आपको कुछ अपडेट्स दे दें, क्योंकि भारत की तरफ से धीरज बम्बा दिवारा और नीरज चौहान केम फेस टू फेस फॉर द ब्रॉन्ज मेडल मैच, और हमने देखा कि नीरज वाज एबल टू सिक्योर द ब्रॉन्ज मेडल इन हिज नेम। दिस वाज अ मैच दैट हैपेंड बिटवीन टू इंडियन शूटर्स कैन वी से। सो धीरज स्टार्टेड विद एन 8 बिफोर नीरज शॉट अ 10, धीरज हिट अ 10 फॉलोड बाय अ 9 बाय नीरज। धीरज देन अगेन वेंट ऑन टू हिट अनदर 10 एंड देयर बाय द मैच वॉज वन बाय नीरज 6-4 की रीडिंग पर टू सिक्योर द ब्रॉन्ज मेडल इन हिज नेम। आपको बता दें कि साउथ कोरिया फिनिश्ड ऑफ विद द गोल्ड इन द मेन्स इंडिविजुअल रिकर्व, डिफीटिंग जापान्स जूनियर नाकानिशी 6-2 इन द फाइनल। एज अ रिजल्ट वी सॉ दैट जापान गॉट द सिल्वर व्हाइल भारत के नीरज चौहान टुक द ब्रॉन्ज मेडल।
1: जी कुश्ती से भी हम 2 पदक यानी 2 गोल्ड मेडल की उम्मीद कर सकते हैं। अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में सेमीफाइनल में कमाल की वापसी करते हुए फाइनल का टिकट कटा लिया है। ताजिकिस्तान के आयाल बोलोस्कुबी के खिलाफ उनका जो मुकाबला था, अमन ने पहले पीरियड में 2-6 से हालांकि वहां ट्रेल कर रहे थे, पीछे थे, लेकिन दूसरे पीरियड में भारतीय पहलवान ने ऐसा पलटवार किया कि मुकाबले का रुख बदल दिया। अमन ने दूसरे पीरियड में 12 अंक बटोरे और आखिरकार 14-8 से मैच अपने नाम कर लिया। अमन सहरावत का फाइनल मुकाबला बेहद सख्त होने की संभावना है, क्योंकि उनके सामने डीपीआर कोरिया के चांग सॉन्ग हान होंगे, जो पुरुषों के 57 किलोग्राम की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर है। वहीं अमन की मौजूदा रैंकिंग 20। खैर जब बात पहलवान की हो और मैट पर पहलवान उतर जाता है तो कागज पे क्या लिखा वो धरा का धरा रह जाता है। वहीं महिला 53 किलोग्राम में अंतिम पंगाल पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल में पहुंच गई हैं। उनके बारे में बताएं तो 53 किलोग्राम का खिताबी मुकाबला उनका सामना होगा 19 की क्योंकि मोए से जापान की खिलाड़ी हैं। हालांकि यहां पर अंतिम पंगाल मजबूत स्थिति में, वर्ल्ड नंबर 1 अंतिम पंगाल यहां पर गोल्ड मेडल जीत सकती हैं।
0: Right, and also a quick update from the world of volleyball, जहां Indian men's volleyball team finished 6th after losing their 5th and 6th place match to Thailand 3-2. India's campaign included a stunning fight back against Qatar, but a defeat to Pakistan ended their hopes of reaching the semi-finals. And as a result, भारत की men's volleyball team ने इस Asian Games के अंदर इस हार के साथ अपने इस सफर का भी यहां पर समापन कर लिया। और आपको ये बता दें, भारत आज क्योंकि भारतीय representation का Asian Games का last day, और officially भी हम बात करें तो majority of the games today get over in the ongoing Asian Games 2026. कल एक ही या दो मुकाबले रहेंगे, तो अब भारत अभी प्रेजेंटली है 5वें स्थान पर मेडल टेबल पे 80 मेडल्स के साथ, जिसमें 18 गोल्ड, 26 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज है। और अगर भारत चाहता है कि वो चौथे स्थान पर समाप्त करे ongoing Asian Games 2026 में, तो उनको चाहिए कि वो उज़्बेकिस्तान ने जिन्होंने अभी तक 20 गोल्ड कमाए हैं उनके इन गोल्ड मेडल्स को पार करके कम से कम 22 या 21 या 23 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर सके। क्या भारत ये कर पाएगा, दिन की समाप्ति तक हमें पता चल जाएगा। फिलहाल मुझे साक्षी मांडवाल और मेरे साथ साथ मोहम्मद शाहिद को दीजिए इजाजत। हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर से दोपहर के 1:30 बजे। थैंक यू।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த தற்போதைய நிலவரம் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டோம்.

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: Hello and a very warm welcome to the live updates of the ongoing Asian Games 2026. घड़ी में बज रहे हैं तो खैर की डेढ़। मेरा नाम है दोस्तों साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है मोहम्मद शाहिद आजमी। और सबसे बड़ी खबर इस घंटे की ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा गोल्ड मेडल का T20 मुकाबला फाइनल्स, भारत ने उसमें अपना गोल्ड पक्का कर लिया है। जी हाँ, ऑफिशियल कन्फर्मेशन का बस इंतजार हो रहा है, एक गेंद बची है ऑफिशियली मैच की समाप्ति में। भारत ने जहां आज पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, उन्होंने अपने निर्धारित 20 ओवरों में 211 बनाए फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, व्हिच इंक्लूडेड टू वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस बाय अभिषेक शर्मा हु मेड 61 एंड 28 बॉल्स एंड तिलक वर्मा हु मेड 51 इन 22 बॉल्स, हेल्पिंग इंडिया रीच टू 211। वहीं पाकिस्तान ने जब वो इस टारगेट को चेस करने के लिए उतरा, उनको चाहिए थे 212 जीतने के लिए, लेकिन पाकिस्तान जस्ट फेल शॉर्ट ऑफ अ फ्यू रन्स। एंड एज आई से दैट, India have brought home the gold medal in the Asian Games 2026. Huge congratulations to the Indian men's T20 cricket team. Pakistan ki pari unke nirdharit 20 over mein chasing 211. They got completely wrapped up for 192 runs. Shahid,
2: बिल्कुल शानदार तरीके से भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। उम्मीद भी की जा रही थी भारतीय टीम गोल्ड मेडल जीतेगी, लेकिन पाकिस्तान इतना संघर्ष करेगा शायद इतनी उम्मीद नहीं थी साक्षी, जिस तरह से पाकिस्तान ने खेला। लेकिन भारतीय टीम ने हर क्षेत्र में पाकिस्तान को परास्त किया, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग।
1: जी ऑफ कोर्स, और 6 विकेट गवा के पाकिस्तान ने 20 ओवर में 211 रनों को चेस करते हुए 212 उनको जीत के लिए चाहिए थे। 192 रन्स में इनके पूरे 20 ओवर समाप्त हो गए। पाकिस्तान की तरफ से सबसे अहम किरदार जिसने निभाया, जिस खिलाड़ी ने, वो रहे हसन नवाज, जिन्होंने 51 गेंदों में 96 रन्स बनाए। उनको दो बार जीवन दान भी मिला, पहली बार उनका विकेट ड्रॉप हुआ था 4 रन्स पे, उसके बाद 59 रन्स पे अगेन ही वाज ड्रॉप्ड एंड देन ही वेंट ऑन टू मेक 96 रन्स, द ओनली सोल इंपॉर्टेंट बैटिंग कंट्रीब्यूटर, या बैटर कहना चाहिए हमें, बिकॉज उसके अलावा बाकी सब खिलाड़ियों से कुछ खास हो नहीं पाया। ओवरऑल अ वेरी वेरी सॉलिड डिस्प्ले बाय द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम, जैसे शाहिद ने सही कहा, तीनों क्षेत्रों में, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में आज।
2: जी बिल्कुल शानदार प्रदर्शन किया था। अब 3 पर गोल्ड मेडल और आस है आज के दिन में, जैसा अंतिम पंघाल है, अमन सहरावत है, इसके अलावा हॉकी टीम से। जी हाँ, 3 गोल्ड मेडल और आने वाले, लेकिन कुछ और मुकाबलों की झलक आपको दिखाऊं, बताऊं। जी हाँ, भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम का अभियान 6 स्थान पर समाप्त हो गया। 5वें और 6 स्थान के मुकाबले में भारत को थाईलैंड के हाथों

0: दो तीन से हार का सामना करना पड़ा। मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और पांचवें सेट तक खींचा। अगर सेट स्कोर की बात करें तो 25-19, 17-25, 25-21, 17-25 और 15-17 रहा। भारत ने दो सेट जीते लेकिन निर्णायक पांचवें सेट में करीबी अंतर से हार गया।
1: जी, और अगर हम यहाँ पे रिकर्व के मैचेस की बात करें, आर्चरी में रिकर्व के, तो भारत के नीरज चौहान और धीरज बम्मा देवारा आज आमने सामने आए फॉर द ब्रॉन्ज मेडल मैच। एंड उसमें हमने देखा कि नीरज चौहान बीट हिज फेलो कंपैट्रियट इंडियन धीरज बम्मा देवारा 6-4 इन द मेंस इंडिविजुअल रिकर्व ब्रॉन्ज मेडल मैच टू क्लेम द ब्रॉन्ज मेडल। जी हाँ, ब्रॉन्ज मेडल घर में वापस आ गया, ये कहना चाहिए घर ही में आ गया भारत के, क्योंकि दोनों भारतीय आर्चर्स हम कहेंगे आमने सामने आज यहाँ पर थे। धीरज फिनिश फोर्थ आफ्टर सेमीफाइनल डिपीट टू साउथ कोरियाज ली वोसियोक और गोल्ड गया साउथ कोरिया का नाम, सिल्वर रहा जापान के नाम, ब्रॉन्ज आया इसमें नीरज के नाम।
0: जी, रग्बी की बात कर लेते हैं। भारत छठे स्थान पर एशियन गेम्स में रहा रग्बी में। रग्बी सेवंस टीम का अभियान जो महिलाओं का था छठे स्थान पर समाप्त हो गया। पांचवें और छठे स्थान के मुकाबले में भारत को कजाकिस्तान से 0-20 से हार का सामना करना पड़ा। पहले हाफ में कजाकिस्तान ने 10-0 की लीड ली थी, बढ़त बनाई थी, और दूसरे हाफ में भी 10 अंक जोड़कर मुकाबला 20-0 से अपने नाम कर लिया।
1: जी, और अब भारत की एक बार मेडल टेबल के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि अब इस जीत के बाद, इस गोल्ड मेडल के साथ, जो भारतीय क्रिकेट टीम, मेंस क्रिकेट टीम T20 के अंदर हमारे लिए लेकर आज आई अगेंस्ट पाकिस्तान, भारत की जो गोल्ड है, गोल्ड मेडल्स, वो अब 19 हो चुके हैं। हमसे ऊपर है उज्बेकिस्तान चौथे स्थान पर इस वक्त, जिनके पास 21 गोल्ड मेडल है। यानी भारत को अगर उज्बेकिस्तान के साथ टक्कर में आना है, उनको रिप्लेस करना है चौथे स्थान पर, तो कम से कम हमें उज्बेकिस्तान के 21 गोल्ड के बराबर तो आना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि भारत इस समय पांचवें स्थान पर कुल मिलाकर 81 मेडल्स कमा चुका है, जिसमें से ऑफ कोर्स एज आई सेड 19 गोल्ड, 26 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज मेडल है। सो ओवरऑल सो फार अपॉलॉजीज ओवर देयर, 18 गोल्ड, 26 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज, व्हिच मेक्स इट 80 मेडल्स इन टोटल फॉर इंडिया। यानी भारत को इस वक्त चाहिए कि वो उज़्बेकिस्तान के साथ अगर बराबरी करना चाहता है तो उनको कम से कम 3 मेडल और कमाने पड़ेंगे। अब देखना होगा कि किस तरह से आज का दिन समाप्त होता है भारत के लिए। उम्मीद करते हैं कि भारत चौथे स्थान पर इस एशियन गेम्स में अपना सफर समाप्त कर पाए। फिलहाल के लिए मुझे साक्षी मांडवाल और मोहम्मद शाहिद आजमी को दीजिए इजाजत। हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर से दोपहर के 2:30 बजे।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த தற்போதைய நிலவரம். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள். இனி தொடர்வது திரைகானம்.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: स्वागत है दोस्तों आप सबका एशियन गेम्स 2026 पर ताजा अपडेट के साथ। घड़ी की सुई में 2:30 बज गए हैं और आज की सबसे खास बात है कि गोल्ड मेडल की हैट्रिक लग गई है। जी हाँ, 3 गोल्ड मेडल भारत ने अब तक जीत लिए हैं, लेकिन आने वाले 1 घंटे में कुछ और पदक भारत की झोली में आ जाएंगे। उसी के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। कुश्ती के मुकाबले शुरू होंगे और अगले 1 घंटे में 3 बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले हैं। कुश्ती के मैट पर भारत का शानदार प्रदर्शन जैसा मैंने बताया जारी है। भारत के 4 पहलवान पदक की दौड़ में बने हैं, जिनमें से 2 पहलवान स्वर्ण पदक के लिए और 2 कांस्य पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में अमन सहरावत ने सेमीफाइनल में तजाकिस्तान के अयाल बेलुस्की को 14-8 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब अमन के पास स्वर्ण पदक जीतने का मौका है। अमन सहरावत का फाइनल मुकाबला DPR कोरिया के चांग सॉन्ग हान से होगा, जो पुरुषों के 57 किलोग्राम की वर्ल्ड रैंकिंग पर टॉप पर है। वहीं मौजूदा रैंकिंग अमन की बात करें 20 है। वहीं महिलाओं के 53 किलोग्राम का जो भार वर्ग है, वहां अंतिम पंघाल शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल पहुंच गए। अंतिम की नजर अब स्वर्ण पदक पर होगी। सेमीफाइनल का मुकाबला अंतिम ने 6-1 से जीतकर फाइनल में जगह बनाई थी, अब वह स्वर्ण पदक के लिए उतरेंगी। अंतिम पंघाल जो विश्व रैंकिंग के पहले पायदान पर है, खिताबी मुकाबला उनका होगा, उनके सामने होंगी 19 नंबर की जो विश्व रैंकिंग है जापान की क्वे का मोए, उनसे सामना होगा, जो 2024 वर्ल्ड चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट। हालांकि उन्होंने गोल्ड मेडल 55 किलोग्राम भार वर्ग में जीता था। वहीं 2 और मेडल आने वाले जिनके बारे में बता दूं। दूसरी ओर 74 किलोग्राम में जो फ्री स्टाइल का मुकाबला सागर जगलान रेपेचेज मुकाबले में उज्बेकिस्तान के राजमबेक जमालबो को 7-3 से हराकर कांस्य पदक के मुकाबले में जगह बनाई। कांस्य पदक का मुकाबला कुछ देर बाद उनका शुरू होने वाला। जबकि 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल में दीपक पुनिया हालांकि सेमीफाइनल मुकाबले में हार गए थे, लेकिन उन्हें कांस्य पदक मुकाबला जीतने का भी मौका। हालांकि सेमीफाइनल मुकाबला बेहद करीबी था, 8-9 से दीपक पुनिया को शिकस्त मिली थी। यानी अमन सहरावत, अंतिम पंघाल, इसके अलावा सागर जगलान और दीपक पुनिया, इन चारों से पदक की भारत को उम्मीद है।
2: जी, और अब बात कर लेते हैं कि आज का दिन भारत के नजरिए से कैसा रहा। तो सबसे पहले द बिग न्यूज ऑफ द डे दैट केम फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। आपको याद दिला दें कि एशियन गेम्स 2026 में सबसे पहला स्वर्ण पदक हमारे लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम लेकर आई थी T20 के मैदान में। और अब आज आखिरी दिन पर द इंडियन मेन्स T20 क्रिकेट टीम हैज ऑल्सो डिफीटेड पाकिस्तान एंड वन अस द गोल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिकेट जो इस साल इंट्रोड्यूस हुआ हमारे एशियन गेम्स के उसमें कंटिजेंट के अंदर, 2 गोल्ड लेकर आया भारत के। आपको बताएं कि भारत ने पहले बल्लेबाजी करके टॉस जीता था, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, जिसमें उन्होंने अपने निर्धारित 20 ओवरों में 211 बनाए थे फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स बाय इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस बिकॉज ऑफ तिलक वर्मा एंड ऑफ कोर्स अभिषेक शर्मा एट द टॉप। एंड देन लेटर पाकिस्तान जब उसको चेस करने आई तो 192 पर पाकिस्तान की पूरी पारी सिमट गई। अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस कमिंग ओवर देयर, ओवरऑल परफॉर्मेंस थैंक्स टू हसन नवाज हु वाज एबल टू मेक 96 इन 51 बॉल्स। उसमें हसन नवाज को 2 बार जीवन दान भी मिला, इसी वजह से पाकिस्तान शायद 192 तक पहुंच गया, बट स्टिल दे फेल शॉर्ट ऑफ द नीडेड रन्स टू चेज द टारगेट। ओवरऑल अगर बात करें तो आज भारत का दिन किस तरीके से रहा। दिन की शुरुआत दोस्तों हमने देखी होती हुई गोल्फ से, यहां पर प्रणवी उर्ज ने आज हिस्ट्री बना दी बाय क्लिंचिंग द गोल्ड फॉर इंडिया द एशियन गेम्स 2026। ये 24 साल बाद हुआ था, क्योंकि इससे पहले गोल्ड गोल्फ में, अगर इंडिविजुअल गोल्फ में कभी आया

0: था तो वो 2002 में था जब शिव कपूर हमारे लिए वो गोल्ड लेकर आए थे। और उसके बाद हमने आर्चरी में देखा अगेन हिस्ट्री गेटिंग क्रिएटेड टुडे, जहां पर कुमकुम महोद ने भी आज गोल्ड मेडल जीत कर हिस्ट्री बना दी आर्चरी के अंदर, जहां इंडियन वुमेन्स रिकर्व आर्चर ने आज एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड जीता। वहीं आर्चरी रिकर्व में भी आज हमने अपने नाम एक मेडल कर लिया। दैट मीन्स आर्चरी ओवरऑल बहुत अच्छा गया, बिकॉज नीरज चौहान वॉज फेस टू फेस विद ऑफ कोर्स एन इंडियन धीरज, जो उनके सामने थे धीरज बुम्बा दीवारा, एंड नीरज चौहान ने धीरज को हरा कर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। सो ओवरऑल अ गुड डे फॉर द इंडियन आर्चर्स एंड डेफिनेटली अ गुड डे इफ यू लुक एट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया ऑल्सो शाहिद फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एशियन गेम्स का, क्या लास्ट डे है इंडियन पार्टिसिपेशन का?
1: जी बिल्कुल, लास्ट डे, अभी कई मेडल आने बाकी है। कोई भी मुकाबला जीत सकता, कोई भी खिलाड़ी मुकाबला हार सकता, ऐसा ही एक मुकाबला हारी है एक खिलाड़ी फुजिनामी, जो 9 साल तक लगातार अजय थी, 9 साल तक कोई भी कुश्ती नहीं हारी थी, 155 मुकाबला उन्होंने लगातार जीता था 57 किलोग्राम वर्ग में। उत्तर कोरिया की विश्व पदक जो रजत पदक विजेता खिलाड़ी है इल सिन सोन, उन्होंने उनके जो रथ का जो घोड़ा था लगातार अजय जो रथ पे सवार थी पिनफॉल करके उनको शिकस्त दी। आपको ये भी बता दूं इसी खिलाड़ी ने आज भारत की जो खिलाड़ी मनीषा उसको हराकर 155वीं जीत दर्ज की थी, लेकिन 156वीं जीत दर्ज नहीं कर पाए दोस्तों। और क्या कुछ घटित होता, क्या रिकॉर्ड्स बनते हैं आने वाले अगले घंटे में आपको बताएंगे जब हम आपसे मुखातिब होंगे 3:30 पर। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और साक्षी मांडवाल को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: अभी இரண்டு மணி 35:50 ரெயின்போ மெலடிஸ் நிகழ்ச்சியில் தான் நேர்கள் இணைகிறீங்க. ஸோ நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து சதிலீலாவதி திரைப்படத்திற்காக உன்னிகிருஷ்ணன் மற்றும் சித்ரா இணைந்து பாடியிருக்கக்கூடிய பாடல் வாலியின் வரிகளில் இளையராஜாவின் இசையில் இணைந்திருங்கள். இது எஃப்எம் ரெயின்போ 101.4.

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: एशियन गेम्स 2026 की ताज़ा अपडेट के साथ हाजिर हूँ मैं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं साक्षी मांडवार। बेहद शानदार अमन सहरावत ने प्रदर्शन किया, ओलंपिक मेडलिस्ट ने आज क्या कमाल की कुश्ती लड़ी है। पीछे होते हैं आगे होते हैं, इस तरह से लगातार उठा पटक के बाद ये फाइनल मुकाबला गोल्ड मेडल भारत के पक्ष में आया। 57 किलोग्राम की कुश्ती थी, अमन सहरावत ने एशियन गेम्स के जो आज का फाइनल मुकाबला था शानदार स्वर्ण पदक जीत लिया। पुरुषों की फ्रीस्टाइल की 57 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में अमन ने उत्तर कोरिया के हान चोंग सोंग को 11-7 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल की शुरुआत अमन के पक्ष में रही, उन्होंने मुकाबले में 4-1 की बढ़त बनाई, लेकिन विश्व चैंपियन हान चोंग सोंग ने जोरदार वापसी की और स्कोर 7-6 अपने पक्ष में कर लिया। मुकाबला जो था निर्णायक मोड़ तक पहुंचा और आखिरी मिनट में अमन पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन यहीं पर अमन ने अपनी असली ताकत दिखाई। मुकाबले में करीब 1 मिनट बाकी रहते ही उन्होंने शानदार टेकडाउन लगाया, चोंग सोंग को नीचे गिराकर अंक हासिल किया और देखते ही देखते स्कोर 11-7 पहुंच गया। इसके बाद अमन ने अपनी बढ़त कायम रखी और स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया। इससे पहले अमन का दिन सिर्फ फाइनल तक पहुंचना ही नहीं था, उन्होंने जो आज मुकाबले जीते वो कमाल के मुकाबले थे। उन्होंने इससे पहले जापान के यामातो ओगावा को 20-9 से तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराया और क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान के नुरदात एतानोव को 12-1 से मात दी। सेमीफाइनल में अमन ने जबरदस्त वापसी की और ताजिकिस्तान के एयाल बोलेस्वेस्की के खिलाफ राउंड में जो पहला राउंड था 2-6 से पीछे होने के बावजूद उन्होंने अगले राउंड में 12 अंक बटोरते हुए 14-8 से जीत दर्ज कर ली। और आज का मुकाबला क्या शानदार मुकाबला था, यहाँ पर अमन ने दिखाया क्यों ओलंपिक मेडलिस्ट, अमन ने दिखाया क्यों वो चैंपियन की कुश्ती लड़ते हैं, क्यों एक चैंपियन पहलवान है। क्योंकि पीछे जब होते हैं वहां से चिंता की लकीर जरूर कोच के चेहरे पर थी, चिंता की लकीर भारतीय दर्शकों पर थी, लेकिन जब वापसी करते हैं तो बैक टू बैक पॉइंट हासिल करते हुए मुकाबले को जीत लेते हैं और भारत के जो झोली है उसको स्वर्ण पदक एक और झोली डाल देते हैं और भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या 20 तक पहुंचा देते हैं। साक्षी
2: जी शाहिद, थैंक यू सो मच एंड वी गिव यू क्विक अपडेट ऑल्सो नाउ एज टू हाउ हैज द डे बीन सो फार फॉर इंडिया एंड ऑफकोर्स जो आज के दिन में अब घटित होने वाला है द इम्पोर्टेंट बिग गेम कमिंग अप इन हॉकी, जहां हम देखेंगे इंडिया इज गोइंग टू बी अप अगेंस्ट मलेशिया इन द गोल्ड मेडल मैच। में बात करी भारतीय मेन हॉकी फाइनल मैच का, आपको याद दिला दे कल भारतीय महिलाओं ने डिफेंडिंग चैंपियंस चाइना को 44 साल बाद, इनफैक्ट कल हरा कर 44 साल बाद भारत को एक बार फिर से गोल्ड मेडल दिलवा दिया एशियन गेम्स के मैदान में। और आज उम्मीद करेंगे कि भारतीय मेन मलेशिया को हराकर वो गोल्ड हॉकी में भारत के नाम करवाए। अ क्विक रैप एट हाउ द डे वेंट सो फार फॉर इंडिया आल्सो वी विल हैव अ लुक। सो फार इट्स बीन अ वेरी एक्शन पैक्ड डे फ्रॉम एन इंडियन एंगल। इन आर्चरी 17 ईयर ओल्ड कुमकुम मोहत प्रोड्यूस रिमार्केबल परफॉर्मेंस टू विन द वुमेन्स इंडिविजुअल रिकर्व गोल्ड मेडल। हर विक्ट्री मार्क्ड इंडियाज फर्स्ट गोल्ड इन द वुमेन्स इंडिविजुअल रिकर्व इवेंट। एंड हम इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि इंडिया आल्सो सिक्योर्ड अनदर आर्चरी मेडल इन द मेन्स इंडिविजुअल रिकर्व इवेंट। नीरज चौहान डिफीटेड कंपैट्रियट धीरज बंबा देवरा 6-4 इन द ब्रॉन्ज मेडल मैच आफ्टर बोथ इंडियंस हैड फॉलन शॉर्ट इन द रिस्पेक्टिव सेमीफाइनल्स। धीरज हैड अर्लियर लॉस्ट 3-7 टू साउथ कोरियाज ली वुसियोक, व्हाइल नीरज वेंट डाउन 1-7 अगेंस्ट जापान्स जूनियर नाकानिशी। और फाइनली दो भारतीय आर्चर्स आमने सामने आए जिसमें बाजी मार गए नीरज अपने पक्ष में और उन्होंने वहां से ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। गोल्फ में भी एक हिस्टोरिक मोमेंट आया जहां प्रणवी उर्ज वन द वुमेन्स इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले गोल्ड मेडल। शी फिनिश्ड द 4-राउंड कॉम्पिटिशन एट 15 under par 1 stroke अहेड ऑफ चाइनाज जिन रोंग एंड सिंगापुर शेनन टान। एंड फाइनली जैसे अभी आपको शाहिद ने रेसलिंग के बारे में बताया, क्रिकेट के अंदर आज हमने स्वर्ण पदक हासिल किया है पाकिस्तान को हरा कर ओवरऑल इन अ वेरी कन्विंसिंग मैनर, बोथ द इंडियन वुमेन एंड मेंस टीम गेटिंग अस अ गोल्ड इन द ओलंपिक एशियन गेम्स 2026।
1: एक और कुश्ती का नतीजा सामने आया, हालांकि कोई बहुत अच्छा नतीजा नहीं रहा है। भारत के सागर जगलान को पुरुषों के फ्रीस्टाइल 74 किलोग्राम वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में कजाकिस्तान के नुरकोस

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। दोस्तों, मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद आजमी।

0: में बज रहे हैं 4:30 और हम लेकर आ गए आपके लिए अभी के लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। आज का दिन ऑलमोस्ट समापन पर है, खासतौर से अगर हम बात करें भारतीय नजरिए से कि कौन कौन से भारतीय खिलाड़ी किस किस इवेंट के अंदर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। रेसलिंग के अंदर एक बाउट और बचा है और अभी हमारा हॉकी का फाइनल मुकाबला चल रहा है, लेकिन ये फाइनल मुकाबला कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं है दोस्तों, बिकॉज इंडिया इज अप अगेंस्ट मलेशिया इन द मेंस हॉकी फाइनल्स फाइटिंग फॉर द गोल्ड मेडल। यस, एंड इंडिया ऑलरेडी हैज अ लीड ऑफ 1 ओवर मलेशिया, द प्रेजेंट स्कोर लाइन रीडिंग 2-1। जी हाँ, और अभी फर्स्ट क्वार्टर अभी इनफैक्ट ओवर भी नहीं हुआ है, फर्स्ट क्वार्टर में अभी 2 मिनट बचे हुए हैं और भारत ने अगर हम बात करें तो माफी चाहूंगी फर्स्ट क्वार्टर थर्ड क्वार्टर इनफैक्ट अभी चल रहा है एंड भारत 2-1 से मलेशिया से अभी बढ़त बनाकर आगे चली रहा है। वी विल हैव टू सी हाउ दिस टर्न्स आउट। भारत की तरफ से बता दो कि 11वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने देखा कि जुगराज सिंह ने भी पीसी को कन्वर्ट करके भारत के नाम 2 करवाए थे। वहीं पर अगर मलेशिया की बात करें तो शैलो सिल्वरस ने मलेशिया को 1 करवाया। द मैच इज स्टिल ऑन, वी विल हैव टू सी हाउ दिस गोज टुवर्ड्स द एंड, बट शायद डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग लीड।
1: बिल्कुल, 2 भारत के पक्ष में आ सकता है हॉकी की, जैसा आपने बात की भारत यहाँ पे लीड पे। दूसरा जो आपने बताया कुश्ती के मुकाबला एक बाकी, जी हाँ उस मुकाबले में भी अंतिम पंगाल अगर जीती थी तो भारत के खाते में गोल्ड आ जाएगा, लेकिन हाँ एक पदक भारत के खाते में जरूर जुड़ा है ब्रॉन्ज मेडल की शक्ल में। भारत के दीपक पुनिया ने एशियन गेम 2026 के पुरुषों के फ्रीस्टाइल 97 वर्ग में जो कांस्य पदक का मुकाबला था वहाँ कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। इस मुकाबले में दीपक ने मंगोलिया के गंगखुयाग गनबातार को कड़े मुकाबले में 2-1 से हराया। दीपक ने शुरुआत में 2-0 की बढ़त बनाई लेकिन बाद में उन्हें पैसिविटी के कारण 1 गंवाना पड़ा और अंतिम क्षणों में उन्होंने संयम बनाए रखा और 2-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस कांस्य के साथ दीपक पुनिया ने लगातार दूसरे एशियन गेम्स में पदक जीता है। इससे पहले उन्होंने हांगझोउ 2023 में रजत पदक हासिल किया था। इससे पूर्व सेमीफाइनल में जैसा कि दीपक पुनिया ने प्रदर्शन किया था और सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान के सेरजोद पोनेवा के हाथों 8-9 से हार गए थे, जिस वजह से उन्हें कांस्य पदक का मुकाबला खेलना पड़ा।
0: जी, एंड सम गुड न्यूज ऑल्सो, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज द लास्ट डे इन द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026 व्हेन इट कम्स टू सीइंग आर इंडियन प्लेयर्स आर इंडियन एथलीट्स रिप्रेजेंट इंडिया इन डिफरेंट इवेंट्स व्हेन इट कम्स टू इन द स्पोर्टिंग अरीना। सो दे स्टार्टेड ऑफ ऑन अ गुड नोट वेयर वी हैड आर इंडियन गोल्फर प्रणवी उर्स क्रिएटिंग हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग द गोल्ड फॉर इंडिया द एशियन गेम्स 2026। दिस केम आफ्टर अ 24-year-old लॉन्ग वेट। द लास्ट टाइम एन इंडियन वन एन इंडिविजुअल गोल्ड इन गोल्फ वॉज शिव कपूर 2002 में। जी हाँ, और आपको ये भी बता दें कि हमारी गोल्फ की महिलाओं की टीम ने भी इन द टीम इवेंट, मैं बात कर रही हूँ अदिति अशोक दीक्षा डागर और प्रणवी उर्स की, उसमें भी उन्होंने भारत को आज सिल्वर मेडल दिलवाया है। आर्चरी की बात करें तो कुमकुम महोद ने भी शी ऑल्सो मेड इंडिया प्राउड बिकॉज शी क्रिएटेड हिस्ट्री बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन्स रिकर्व आर्चर टू विन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स। इन अ थ्रिलिंग फाइनल शी बीट हर कोरियन ओपोनेंट ओ येजिन बाय अ शूट ऑफ एंड देयरबाय वी सॉ हर ब्रिंगिंग द कोवेटेड गोल्ड क्रिएटिंग हिस्ट्री फॉर इंडिया।
1: जी, एक और कांस्य पदक भारत के खाते में आते आते रह गया है। सागर जगलान अपना कांस्य पदक का मुकाबला हार गए, वहीं अमन सहरावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया। जहां अमन ने फाइनल में उत्तर कोरिया का हान चोंगसोंग को 11-7 से हराया। मुकाबले की शुरुआत में अमन 4-1 की बढ़त बना ली थी लेकिन चोंगसोंग ने जोरदार वापसी करते हुए स्कोर 7-6 अपने पक्ष में कर लिया और आखिरी मिनटों में मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया, लेकिन दबाव के इस पल में अमन ने शानदार टेकडाउन लगाकर मुकाबले का रुख पूरी तरह से पलट दिया और स्कोर 11-7 करके गोल्ड मेडल पर अपना नाम लिखवा लिया।
0: जी, और आर्चरी के अंदर ही आपको ये भी बता दें कि हमने देखा कि कैसे 2 का भी आज एक मुकाबला हो गया फॉर द ब्रॉन्ज मेडल। मैं बात कर रही हूँ नीरज चौहान और धीरज बम्बा देवारा की, जिसमें नीरज चौहान ने धीरज को 6-4 से मेंस इंडिविजुअल रिकर्व में हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही ब्रॉन्ज मेडल भारत का ही नाम रहा क्योंकि 2 थे। द गुड न्यूज ऑफ द बेस्ट पार्ट वॉज दैट इट केम बैक टू एन इंडियन एंड इन दिस केस दिस वॉज नीरज। एंड उसके बाद वी हैव टैक्वांडो के अंदर भी, जहां कशिश मलिक हैज बोर्ड आउट ऑफ द वुमेन्स 56 केजी राउंड ऑफ 16 इवेंट एट द एशियन गेम्स 2026। इन द वुमेन्स 67 किलोग्राम राउंड ऑफ 16 इन टैक्वांडो ज्योति यादव आल्सो लॉस्ट टू कनलक चोनकोलिन 0-2 एंड देयरबाय भारत की कैंपेन स्पोर्ट के अंदर आके खत्म हो गई।
1: जी बिल्कुल, और भारत अब जो मेडल टेबल उसके चौथे पायदान पे पहुंचने के बेहद करीब है। देखना होगा क्या वहां पहुंच पाता। उज्बेकिस्तान के 21 गोल्ड, भारत के 20 गोल्ड है, अभी 2 भारत के पक्ष में

0: आ सकता है कुश्ती और हॉकी से। देखना होगा अगले एक घंटे में क्या कुछ घटित होता है, तस्वीर साफ हो जाएगी, जरूर बताएंगे। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और साक्षी मांडवाल को ठीक 5:30 बजे की अपडेट तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
1: एशियन गेम्स 2026 IG नगोया।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल, मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है मोहम्मद शाहिद आजमी। हम लेकर आ गए हैं आपके लिए शाम के 5:30 बजे की लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026। और दोस्तों, आपको इस अपडेट को शुरू करने से पहले बता दें कि भारत का सफर एशियन गेम्स 2026 के अंदर आकर अब ऑफिशियली समाप्त हो चुका है। जी हाँ, भारत के सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स अब यहाँ पर आकर समाप्त हो गए हैं आज। और चलिए आपको सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर देते हैं आज के दिन की, जिसपे आज भारत ने अपने एशियन गेम्स का सफर समाप्त किया, वो है एक मीठे से गोल्ड मेडल के साथ। जी हाँ, जो कि आया हॉकी में, जहां भारत ने मलेशिया को 5-1 से आज हरा दिया। एंड दिस इनफैक्ट मार्क्स अ लॉट ऑफ माइलस्टोन्स फॉर द इंडियन मेंस हॉकी टीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर द डिपेंडिंग चैंपियंस, लेट्स नॉट फॉरगेट, एंड दिस इज बैक टू बैक एशियन गेम्स गोल्ड मेडल फॉर द इंडियन मेंस हॉकी टीम। लेट्स ऑल्सो नॉट फॉरगेट दैट द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम गॉट अस द गोल्ड यस्टरडे बाय डिफीटिंग द डिपेंडिंग चैंपियंस चाइना 1-0। एंड एज अ रिजल्ट, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन बोथ द मेन एंड वुमेन्स हॉकी टीम हैव गॉन ऑन टू विन द गोल्ड इन द एशियन गेम्स। अ लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स बीइंग ब्रोकन आउट देयर, माइलस्टोन्स बीइंग सेट। ऑल्सो विद दिस विन, नाउ इंडिया हैव बुक्ड अ प्लेस फॉर द LA 2028 Olympics, the big one. Quickly taking you down through the journey of who scored the goals for India. Harmanpreet Singh scored the goal in the 11th minute, penalty corner conversion. Then Jugraj Singh in the 23rd minute, Hardik Singh, Shilanand Lakra, and finally in the 57th minute, Harmanpreet Singh once again came back to convert a penalty corner. Malaysia ki taraf se Shilo Silverius ne sirf ekloota goal score kiya. 5-1 se Bharat ne jab Malaysia ko haraya, pehle quarter mein 1-1 ki barabari ho gayi thi. दूसरे हाफ टाइम में हमने देखा कि भारत ने एक और गोल से बढ़त बनाई। थर्ड क्वार्टर में भारत ने फिर से एक और गोल से बढ़त बनाई और फाइनली लास्ट क्वार्टर के अंदर भारत ने 2 गोल मार के 5-1 से मलेशिया को आज हरा दिया।
2: बिल्कुल हरा दिया। और यहाँ पर एक पदक की और उम्मीद थी अंतिम पंगाल से कि गोल्ड लाएंगे, लेकिन वो गोल्ड से चूक गई कुश्ती में। भारत के लिए अंतिम पंगाल ने आज की अंतिम कुश्ती लड़ी और रजत पदक जीत लिया। महिलाओं के 53 किलोग्राम भार वर्ग में जो फाइनल मुकाबला था अंतिम, को जापान की मोए क्योका के हाथों 1-9 से हार का सामना करना पड़ा। मुकाबले में अंतिम 0-2 से पीछे चल रही थी, लेकिन दूसरे पीरियड के शुरुआत में उन्होंने एक अंक हासिल कर वापसी की कोशिश की। हालांकि क्योका ने इसके बाद टेक डाउन करके मुकाबले के अंतिम क्षणों में 4 अंक बनाते हुए अपना जो गोल्ड मेडल था अपने पक्ष में कर लिया। अंतिम पंघाल ने एशियन गेम्स में अपना यह दूसरा पदक जीता। इससे पहले हांगझाओ में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। जापानी पहलवान ने आज दिखाया वो शानदार डिफेंस कर रहे थे। हालांकि पहला हाफ दोनों पहलवान डिफेंसिव कुछ अंदाज में खेल रहे थे, रक्षात्मक रणनीति अपनाई थी, लेकिन दूसरे हाफ जब दूसरा हाफ शुरू होता वहां अगर कोशिश करती है अंतिम पंघाल पॉइंट बनाने के लिए, लेकिन जापानी पहलवान ने सिर्फ रक्षात्मक वहां पर कुश्ती लड़ी बल्कि पॉइंट भी हासिल किए थे। अगर बता दूं, जैसा साक्षी ने बताया, भारत का अभियान खत्म हो गया है, तो भारत का जब अभियान खत्म हो गया तो इसी समय कुश्ती का भी अभियान खत्म हो गया। और अंतिम जो मुकाबला था वो कुश्ती का ही मुकाबला था, जहां अब बता दें भारत ने कुश्ती में कुल 6 पदक अपने नाम किए, जिनमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। फ्री स्टाइल में 3 भारत ने पदक जीते, ग्रीको रोमन में 2 और महिला कुश्ती में भारत ने 1 पदक हासिल किया। अगर पदक विजेताओं की बात कर ले तो अमन सहरावत ने यहाँ गोल्ड मेडल जीता, जबकि सुजीत कलकल ने भी गोल्ड मेडल जीता, यानी दोनों गोल्ड मेडल फ्री स्टाइल कुश्ती में। वहीं पर नितेश और अंतिम पंघाल ने रजत पदक हासिल किया। नितेश ग्रीको रोमन के पहलवान हैं, अंतिम पंघाल इसके साथ साथ रजत पदक हासिल करती, जबकि दीपक पुनिया फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीतते हैं, जबकि सुनील कुमार ग्रीको रोमन में कांस्य पदक हासिल करते हैं। यानी 2 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज के साथ भारतीय कुश्ती का अभियान खत्म हो गया। पिछले अगर एशियन गेम्स की तुलना करें तो इस बार उससे बेहतर प्रदर्शन, हालांकि महिलाओं ने कुछ हद तक निराश जरूर किया है।
1: जी, एंड द हाईएस्ट इवेंट, और शुड वी से द इवेंट दैट हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स फॉर इंडिया वाज एथलेटिक्स, जिसने कुल मिलाकर 24 मेडल भारत को दिलवाए हैं इस एशियन गेम्स 2026 में, जिसमें से 1 गोल्ड आया, 9 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज मेडल। जो गोल्ड मेडल आया था, लेट्स नॉट फॉरगेट

0: It was the biggest, happiest moment for our girls out there. Women's 4 into 400 meter relay के अंदर आया था जहाँ भारतीय women athletes ने history रच दी पहली बार 4 into 400 meter relay के अंदर भारत को gold दिलाकर. उसके बाद silver दिलाने में हमने देखा गुलवीर सिंह men's 10,000 meter में, गुलवीर सिंह men's 1500 meter में भी silver लाए, सर्वेश men's high jump में लेकर आए, men's javelin throw में यशवीर सिंह थे, men's long jump में मुरली श्री शंकर थे, men's marathon में सावन बरवाल, men's शॉर्ट पुट में तजेंद्र पाल सिंह तूर और women's लॉन्ग जंप में एन सी सोजर भारत के लिए सिल्वर मेडल्स लेकर आए. भाई ब्रॉन्ज की अगर बात करें तो मेंस 4 इंटू 400 मीटर रिले के अंदर भारत की टीम ने ब्रॉन्ज जीता. कुल मिलाकर जो ब्रॉन्ज मेडल्स भारत को मिले थे आर्च एथलेटिक्स के अंदर दोस्तों वो रहे 14, जिसमें हमारे हैं गुलवीर सिंह, तेजस्विन शंकर, रोहित यादव, सीमा हरिता इन वुमेन्स 200 मीटर, पारुल चौधरी इन वुमेन्स 3000 मीटर स्टीपल चेस, प्राची, विद्या रामराज, पारुल, पूजा, बरानिका, इलांगजोवन और मनप्रीत कौर. ये डिटेल्स हम लेकर आपके लिए और आएंगे. लेकिन आपको एक गुड न्यूज ये भी दे दें कि भारत ने अब एशियन गेम्स का सफर अपना फिलहाल के लिए पांचवें स्थान से चौथे स्थान पर अभी अपनी जगह बना ली है. जी हाँ, इंडिया प्रेजेंटली स्टैंड ऑन द फोर्थ स्पॉट विद द टोटल ऑफ 85 मेडल्स व्हिच इंक्लूड्स 21 gold medals, 27 silver, 37 bronze. More on this we'll bring to you in the next live update at 6:30. Thank you so much for now for tuning in. This is me, Sakshi Mandwal, and Mohammad Shahid Azmi saying goodbye for now.
1: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.
2: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த தற்போதைய நிலவரம் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள்.

0: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी. मैं हूँ दोस्तों साक्षी मांडवाल. मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद आजमी और हम लेकर आ गए हैं शाम के 6:30 बजे के लाइव अपडेट्स ऑफ द एशियन गेम्स 2026. आप सबको बता दें कि भारत का ऑफिशियली जो सफर था 2026 के एशियन गेम्स में अब आकर समाप्त हो चुका है. जी हाँ, ऑल द इवेंट्स हैव ऑफिशियली कंक्लूडेड फॉर द इंडियन कंटिंजेंट इन द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 एंड विद दैट इंडिया हैज फिनिश्ड देयर प्लेस ऑन द फोर्थ स्पॉट इन द मेडल टैली. जी हाँ, चौथे स्थान पर भारत ने अपना सफर मेडल टेबल पे खत्म किया है. कुल मिलाकर भारत के पास है 85 मेडल्स, 21 गोल्ड, 27 सिल्वर, 37 ब्रॉन्ज. द डे स्टार्टेड फॉर इंडिया टुडे ऑन अ स्वीट नोट. सबसे पहले हमने देखा हमारे पास गोल्ड आया गोल्फ से, जहां पर एक रिकॉर्ड या हिस्ट्री भी बनी. उसके बाद आर्चरी से आया, फिर क्रिकेट ने हमें दिया और फाइनली हमें हॉकी ने गोल्ड देकर दिन की समाप्ति भी करी. लेट्स नॉट फॉरगेट दैट रेसलिंग में भी हमें आज एक गोल्ड मिला है. इस सब के बारे में तो शायद आपको बताएंगे, बट मैं आपको एक सरसरी नजर से लेकर चलती हूँ कि मेडल टेबल के अंदर जो हमारे मेडल्स आए हैं वो किस इवेंट में कितने कितने आए. आर्चरी के अंदर हमने पाए हैं टोल कुल मिलाकर 9 मेडल्स, इसमें से 5 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है. एथलेटिक्स में 1 गोल्ड, 9 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज. एक ऐसा ये स्पोर्ट रहा जिसमें सबसे ज्यादा मेडल्स भारत ने कमाए अपने लिए, 24 टोटल. बैडमिंटन में 1 ब्रॉन्ज आया, बॉक्सिंग में 3 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज. क्रिकेट में महिलाएं और पुरुष दोनों ने ही T20 क्रिकेट के अंदर 2 गोल्ड भारत को एशियन गेम्स में दिलवाया. गोल्फ में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर. हॉकी में 2 गोल्ड. महिलाएं और पुरुष दोनों ने भारत को अब की बार गोल्ड मेडल दिलवाया. कबड्डी में 2 गोल्ड, कुराश में 1 ब्रॉन्ज, मिक्स मार्शल आर्ट में 1 ब्रॉन्ज, रोइंग में 1 ब्रॉन्ज, सेलिंग में 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, सेपेक्तक्रो में 1 ब्रॉन्ज, शूटिंग में कुल मिला के 15 मेडल, 3 गोल्ड, 8 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज.
1: जी, और आज 3 स्वर्ण पदक एक ही दिन में आए. सबसे पहले बात करेंगे तीरंदाजी की. कुमकुम

0: अनिल मोहोद ने महिला रेकर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में कुमकुम ने कोरिया की ओ एन जिन को 5-6 के यानी 6-5 से कड़े मुकाबले में शिकस्त दी। और हॉकी में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने तो कमाल ही कर दिया, स्वर्ण पदक जीत लिया। यहां पर मलेशिया को 5-1 से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया। महिलाओं ने भी खिताब अपने नाम किया, पुरुषों ने खिताब अपने नाम किया। यानी जिस तरह क्रिकेट में 2 पदक आए हैं गोल्ड, इसी तरह हॉकी में 2 गोल्ड आए हैं। कुश्ती में अमन सहरावत ने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में अमन ने उत्तर कोरिया के हान चोंग सोंग को 11-7 से हराया। वहीं अंतिम पंघाल ने महिलाओं के 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। फाइनल में उन्होंने जापान की मोए क्योका को 1-9 से, उनसे जो मुकाबला था क्योका से, अंतिम पंघाल को 1-9 से हार का सामना करना पड़ा। कुश्ती में दीपक पुनिया ने भी पुरुषों के फ्रीस्टाइल 97 किलोग्राम में कांस्य पदक अपने नाम किया। यानी भारत के नजरिए से देखा जाए तो जब भारत के तमाम खेल खत्म हो गए, आज के दिन 3 स्वर्ण पदक बेहद महत्वपूर्ण है
1: जी। और क्योंकि हम आपको मेडल टेबल में बता रहे थे तो थोड़ा आगे चलते कुछ और इवेंट्स जो बचे हुए हैं, उसमें है सॉफ्ट टेनिस जिसमें 1 ब्रॉन्ज आया, स्क्वॉश में हमने 2 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज कमाए हैं, टेबल टेनिस में 1 ब्रॉन्ज, वेट लिफ्टिंग में 1 सिल्वर, रेसलिंग में कुल मिलाकर 6 मेडल्स भारत ने कमाए, 2 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज, और वुशू में 1 सिल्वर भारत ने कमाया। तो इसलिए भारत ने अपना 2026 का एशियन गेम्स का सफर कुल मिलाकर 85 मेडल्स पर समाप्त किया, 21 गोल्ड एंड होपफुली व्हेन टुमारो देयर इज एन इवेंट उज़्बेकिस्तान, क्योंकि अभी हमारे साथ 21 गोल्ड पर ही टाइड है। उज़्बेकिस्तान का भी एक और इवेंट बचता है कल इक्वेस्ट्रियन के अंदर, तो देखना होगा कि क्या इक्वेस्ट्रियन के अंदर उज़्बेकिस्तान कल गोल्ड अपने लिए ला पाता है कि नहीं। चांसेस उसके कैसे हैं, हाईली अनलाइकली कह रहे हैं लोग, लेकिन एक्सपर्ट्स खासतौर से, बट वील हैव टू सी टिल इट गेट्स ऑफिशियल। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर भारत को माना जाएगा शायद कि हम चौथे स्थान पर ही मेडल टेबल पर,
0: बिल्कुल होप कि हम चौथे स्थान पर खत्म करेंगे। लेकिन हम उन खिलाड़ियों की भी बात, श्रोताओं तक बात पहुंचाएं कि जिन्होंने एक से ज्यादा भारत के लिए मेडल जीते। भारत की बात करें तो आर्चर कुमकुम मोहोत के खाते में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक आया, जबकि निशानेबाज नीरू ढांडा ने भी 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता। जी हाँ, 3 पदक इन दोनों खिलाड़ियों ने जीते, दोनों संयुक्त रूप से टॉप पर है। नीरू ने निशानेबाजी ट्रैप व्यक्तिगत और मिश्रित टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता, वहीं ट्रैप में महिलाओं की टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल हासिल किया। वहीं कुमकुम मोहोद ने रिकर व्यक्तिगत और टीम में गोल्ड मेडल जीता, जबकि मिश्रित टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। इसी तरह तीरंदाज थिरुमुरु मणिरत्नम ने तीसरे स्थान पर रहते हुए कंपाउंड पुरुष टीम और कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में गोल्ड, जबकि कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। इसी तरह एथलीट विद्या रामराज ने 1 गोल्ड 3 इसके अलावा सहित 3 पदक जीते, जबकि निशानेबाज रुद्रांश पाटिल ने 2 रजत पदक समेत 3 पदक जीते हैं। यह भारत के वो खिलाड़ी जिन्होंने एक से ज्यादा पदक जीते हैं। लेकिन अगले 1 घंटे बाद क्या कुछ और नया ताजा आता है और भारत का क्या कुछ ओवरऑल प्रदर्शन रहा, हम अगले 1 घंटे बाद आपको बताएंगे। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और साक्षी मांडवाल को ठीक 7:30 बजे तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: स्वागत है दोस्तों आप सबका एशियन गेम 2026 की आज की अंतिम अपडेट में। आज बात करेंगे भारत ने क्या कुछ हासिल किया, इस एशियन गेम्स में क्या कुछ भारत की उपलब्धियां रही और आज के दिन क्या कुछ खास रहा एशियन गेम्स में। जैसा कि आज का दिन शानदार उपलब्धियों भरा रहा, भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 9 पदक अपने नाम की। पुरुषों की हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता। कुश्ती में अमन सहरावत ने स्वर्ण पदक जबकि अंतिम पंघाल ने रजत और दीपक पुनिया ने कांस्य पदक हासिल किया। तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने कांस्य पदक हासिल किया, जबकि इस प्रदर्शन के साथ भारत के पदकों की संख्या 85 कुल हो गई जिनमें 21 स्वर्ण 27 रजत शामिल हैं। कांस्य पदक जिस तरह से भारत ने आज जीते, स्वर्ण पदक जीते हैं, यकीनी तौर पर कह सकते हैं भारत की जो मेडल टैली उसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिला साक्षी
2: जी। एंड अ क्विक अपडेट आल्सो एज हाउ द डे स्टार्टेड, देयर वर 2 अदर गोल्ड मेडल्स इन दिस लिस्ट ऑफ मेडल्स दैट इंडिया वाज एबल टू फिनिश विद ऑन द लास्ट डे ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स। वन वाज एट द स्टार्ट ऑफ द डे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ गोल्फ वेयर प्रणवी उर्स क्रिएटेड हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग द गोल्ड फॉर इंडिया एट द एशियन गेम्स 2026। अलोंग विद दैट प्रणवी उर्स, अदिति अशोक एंड दीक्षा डागर ऑल्सो claimed the silver medal in the women's team event in golf. Let us also tell you all that no Indian has won an individual gold in golf since Shiv Kapoor in 2002. So it was a 24-year-old long wait that finally came to an end when Pranavi Urs was finally able to get us the gold in the Asian Games 2026. Along with that, the big event of the day that happened was in the world of cricket, where it was not just the women who bought us the gold but also the men who clinched the gold in the Asian Games today by defeating Pakistan comfortably by a margin of 19 runs. Having won the toss and choosing to bat first, India posted a mammoth score of 211 runs, while Pakistan in return of chasing that target was only able to chase and put on board 192. Hence a good day for India overall, Shahid, with wrapping of the last day.
1: इस एशियन गेम्स में अगर हम मल्टीपल मेडलिस्ट की बात करें, जो वर्ल्ड लेवल पर हम एशियन गेम्स के मेडलिस्ट की बात करें, तो सबसे ऊपर हैं जो चीन की मेडलिस्ट हैं, चीन की तैराक है जांग झांगशुआ, जिन्होंने 7 गोल्ड मेडल जीतकर सबसे ऊपर बनी हैं। उनके नीचे बात करें उनके ही देश की तैराक यू इतिंग है, जिन्होंने 5 गोल्ड समेत 7 पदक जीते। इसी तरह चीन की तैराक जो तीसरी तैराक है ली बिंगजी ने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसी में अगर भारत की बात करें तो भारत की आर्चर कुमकुम मोहोद के खाते में 2 स्वर्ण और 1 रजत है, जबकि निशानेबाज नीरू ढांडा ने भी 2 गोल्ड और 1 सिल्वर समेत 3 पदक जीते, दोनों संयुक्त रूप से टॉप पर बने। वहीं अगर बात करें तीसरी खिलाड़ी की बात करें तो भारत जो तीसरे खिलाड़ी है कुमकुम मोहोद के अलावा बात करें तो तीरंदाज थिरुमुरु मणिरत्नम, जिसने तीसरा स्थान हासिल किया इस लिस्ट में। कंपाउंड पुरुष टीम और कंपाउंड मिश्रित टीम में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, जबकि कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में उन्होंने

0: कांस्य पदक हासिल किया। इसी तरह एथलीट विद्या राम राज ने एक गोल्ड समेत 3 पदक जीते हैं, जबकि निशानेबाज रुद्रांक पाटिल 2 रजत समेत 3 पदक। इसके अलावा बात करें तो आर्चर ज्योति सुरेखा वेन, प्रतिका प्रदीप, साहिल राजेश जाधव, जिसके अलावा चिकिता तनिपार्थी और कुशल दलाल ने भी 2-2 गोल्ड मेडल पर निशाना लगाया, यानी 2-2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं।
1: Right, now let's have a look at the way India finished in the ongoing Asian Games 2026. We finished on the 4th spot in the medal table with a total of 85 medals, which includes 21 golds, 27 silver, 37 bronze. The number of events that got us the maximum number of medals were 3 basically. Athletics getting us 24 medals in totality, shooting getting us 15 medals in totality, and along with that, wrestling was just a little behind, getting us a total of 6 medals, which was also boxing along with that, which also had 6 medals, and archery 9. Now, athletics, which had 24 medals, has 1 gold, 9 silver, 14 bronze. While when we talk of shooting, which has 15 medals in total at the end of the Asian Games, includes 3 gold, 8 silver, 4 bronze.
0: जी बिल्कुल, अगर हम मेडल टेबल पर नजर डालें तो टॉप 3 कंट्री एंड टॉप 3 देशों की बात करें तो उसमें सबसे ऊपर यकीनी तौर पर चीन है, जिसने 169 गोल्ड, 89 सिल्वर और 83 ब्रॉन्ज समेत 341 पदक जीते, जबकि जापान जो मेजबान है उसने 83 गोल्ड, 95 इसके अलावा रजत पदक और 91 कांस्य समेत 269 पदक जीते, जबकि रिपब्लिक ऑफ कोरिया की बात कर लेते 39 स्वर्ण, 43 रजत और 68 कांस्य समेत 150 पदक जीतकर तीसरे पायदान पर, तीसरे नंबर पर, जबकि भारत की, जैसा साक्षी ने बताया, चौथा पायदान फिलहाल है।
1: Yes, indeed. And if you look back at the Asian Games 2026, then we can take a moment to just sit back and enjoy and bask in the pride and the fact that how many women out there, women athletes especially, this time dominated the Asian Games 2026. Here's to all our hard-working athletes, to the Indian players, the entire Indian contingent that went all the way to Japan to represent India and made us Indians very, very proud as citizens of this country for what our players, our athletes have achieved at the end of the Asian Games 2026. On that note, I believe it is now finally time for me, Sakshi Mandwal, and Mohammed Shahid Azmi to finally say our last goodbye as we bring the coverage of the live updates that we brought to you every hour through the medium of Akashvani every day. This has been a beautiful journey, bringing the updates to all our lovely listeners. Hope you all enjoyed tuning in and enjoyed also our updates. Thank you. Goodbye for now.
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த தற்போதைய நிலவரம். டெல்லியில் இருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள். ரெயின்போ சாட் பாக்ஸ் நிகழ்ச்சியில நிகழ்ச்சியோட இந்த பாடலை கேட்டிருக்கிறது மந்தைவெளியிலிருந்து விநாயகம்.

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: बीसवें एशियाई खेलों की स्पर्धाएं आज तकरीबन समाप्त हो गईं। दो सप्ताह का खेल मेला, शानदार जानदार प्रदर्शन की खुशी तो कहीं चूक जाने का गम, या फिर अपने तई हर संभव प्रयास न कर पाने का मलाल, यही तो खेल है। खेलों का रोमांच है, खेलों का जुनून है, उनका जादू है। खेल आपको खुद को साबित करने का दूसरा मौका भी जरूर देता है, किसी दूसरी जगह, किसी दूसरे समय। एक और बड़ी बात, ऐसे खेल मेले दूर दराज के खिलाड़ियों से मिलने, सोच को साझा करने, आत्मीयता जगाने का भी अवसर देते हैं और अपनी संस्कृति को दूसरे तक पहुंचाने का भी। आईजी नगोया एशियाई खेलों पर अपनी दैनिक हाइलाइट्स के साथ उपस्थित हैं हम। नमस्कार, मेरा नाम है अनुपम पाठक। आज की हेडलाइंस। पुरुष हॉकी में भी स्वर्ण पदक आया और 2028 ओलंपिक का टिकट भी। क्रिकेट में भारत की बादशाहत बरकरार, बना चैंपियन। कुश्ती में आज तीनों रंग के एक एक पदक आए। गोल्फ में हुआ कमाल, प्रणवी ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा, टीम रजत भी। आर्चरी में कुमकुम का कमाल, महिला स्वर्ण पदक पे निशाना लगाया। पुरुष हॉकी में भारत ने आज गजब का फाइनल खेला मलेशिया के विरुद्ध, 5-1 से धमाकेदार जीत और एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार बैक टू बैक गोल्ड मेडल पाया और पहली बार महिला और पुरुष दोनों गोल्ड मेडल भारत ने एक ही गेम में जीते। लेकिन पहले बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट में चिर प्रतिद्वंदी थे आमने सामने भारत और पाकिस्तान। पिछले काफी समय से भारत इस प्रतिद्वंदिता में लगातार हैवीवेट बना रहा है और आज भी कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ। भारत की जीत और स्वर्ण पदक की पूरी आशा थी जो खिलाड़ियों ने आसानी से पूरी कर दी। पहले बैटिंग कर 200 प्लस का स्कोर खड़ा करके मैच की मीमांसा मेघा से।
2: इंडिया हैव कंप्लीटेड अ गोल्डन डबल इन क्रिकेट एट द एशियन गेम्स। द इंडियन मेंस टीम डिफीटेड पाकिस्तान बाय 19 रन्स इन द फाइनल टू सक्सेसफुली डिफेंड देयर एशियन गेम्स टाइटल। बैटिंग फर्स्ट, इंडिया पोस्टेड एन इंपोजिंग 211 फॉर 6। अभिषेक शर्मा लेड द चार्ज विद अ ब्लिस्टरिंग 61 ऑफ 28 डिलीवरीज, इंक्लूडिंग 7 सिक्सेस एंड 3 फोर्स। ही ब्रॉट अप अ हाफ सेंचुरी इन ओनली 20 बॉल्स। तिलक वर्मा प्रोवाइडेड द फिनिशिंग फ्लरिश विद एन अनबीटन 51 ऑफ 22 बॉल्स, हेल्पिंग इंडिया क्रॉस द 200 मार्क। Pakistan's chase got off to a difficult start as India's spinners made early inroads. Akshar Patel picked up two important wickets, leaving Pakistan struggling at 76 for 3 at the halfway stage. Hasan Nawaz kept Pakistan's hopes alive with a fighting 96, but India held their nerve to restrict Pakistan to 192 for 6. This victory completes India's cricket double at the Games. The women's team had earlier defeated Sri Lanka by a commanding 147 runs in the final. Two teams, two gold medals and another successful Asian Games campaign for Indian cricket.
1: हॉकी में कल हमने महिलाओं का हुनर देखा तो आज पुरुषों की बारी थी। हाँ, रणनीति कल से अलग थी, सिर्फ रक्षण नहीं, आक्रमण से भरपूर। टीम पूरा चढ़ कर खेली और दिखाया कि हमारी तो आज की नीति है आक्रमण करो, गोल कमाओ। एक परफेक्ट मैच खेला भारत ने आज, खासकर हाफ टाइम के बाद के दोनों क्वार्टर्स में तो भारतीय हॉकी की धनक पूरे मैदान में गूंज रही थी। हूटर बजा तो वो भारत के इन एशियन गेम्स में 5-1 से अपने 5वें स्वर्ण पदक का जयघोष था वो। पहले क्वार्टर की शुरुआत संयत तरीके से हुई, एक दूसरे को आंकने में ज्यादा मूव नहीं बने। खेल ने रंग पकड़ा करीब 10 मिनट के बाद, पहला पेनल्टी कॉर्नर रोक दिया गया। फिर हरमन ने दिखाया कि क्यों उन्हें पेनल्टी कॉर्नर्स और ड्रैग फ्लिक का किंग कहा जाता है। लेकिन हॉकी प्रेमी इस लीड का आनंद ले पाते तब तक प्रत्याक्रमण हुआ मलेशिया का। शैलो सिल्वेरियस ने शानदार फील्ड गोल कर दिया, बिल्कुल हाफ वॉली स्टाइल में उन्होंने शॉट मारा। सेकेंड क्वार्टर में मलेशिया ने हमले बनाए लेकिन डिफेंस बहुत अच्छा किया भारत ने। दो पेनल्टी कॉर्नर भी उन्हें मिले लेकिन रक्षण ने बेकार कर दिए। फिर भारत के हमले हुए, पेनल्टी कॉर्नर मिला, इस बार जुगराज ने लिया। उन्होंने अपनी ड्रैग फ्लिक की स्पीड दिखाई, दाहिनी ओर के गोल पोस्ट को खड़का दिया। हाफ टाइम का स्कोर 2-1। तीसरे क्वार्टर से भारतीय टीम पूरे रंग में आ गई और मलेशिया को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। एक के बाद एक मूव बनाए, हरमन का एक पुश मनदीप को गया और उनका शॉट मलेशिया के डिफेंडर के शरीर से लगकर गोल के सामने और पेनल्टी स्ट्रोक मिला। हार्दिक ने गोलकीपर को छकाता हुआ जन्नाटेदार शॉट लगाया और भारत 3-1 से आगे। अब भारतीय फैंस को थोड़ी राहत की सांस मिली क्योंकि हॉकी में एक गोल का अंतर तो आप जानते हैं, आप चैन से नहीं बैठ सकते। फोर्थ क्वार्टर में

0: मलेशिया के पास एक ही च्वाइस बची थी, ऑल आउट अटैक पर जाने की। शुरुआत उन्होंने ऐसे ही की, लेकिन भारतीय रक्षण पूरी तरह मजबूत और अभेद्य था और बहुत जल्द ही भारतीय ही पूरे मैदान पर छा गए। एक के बाद एक आक्रमण करते हुए मलेशिया मैच में दिखा ही नहीं। एक बार तो 4 पेनल्टी कॉर्नर्स एक के बाद एक मिले। फिर एक भारतीय हमले में अभिषेक ने एक शानदार दौड़ लगाई, गेंद के साथ बिल्कुल बेस लाइन के पैरेलल, और उसके बाद पास भेजा गोल के सामने खड़े हुए शिलानंद लाकरा को, जिन्होंने कोई गलती नहीं की और भारत 4-1 से आगे। स्वर्ण पदक तो बिल्कुल पक्का सा हो गया, लेकिन हमले जारी रहे और पेनल्टी कॉर्नर आया तो हरमन ने डी पर इस बार सिर्फ 3 खिलाड़ी रखे। समय उनको पूरा मिला और सीधा गोली की तरह जन्नाटेदार शॉट लगाया उन्होंने, स्कोर को कर दिया 5-1। इत्तेफाक से ये वो समय था जब भारतीय इन गेम्स में अंतिम बार किसी मैदान में थे, यानी खेलों से शानदार विदाई ली 5-1 से सुनहरी जीत के साथ और ओलंपिक खेल 2028 के प्रवेश टिकट के साथ। जय हो भारतीय हॉकी की। गोल्फ में कल ही प्रणवी ने लीड बना ली थी, पहले स्थान पर आ गई थी। आज 10वें होल से उन्होंने शुरुआत की और संयम, एकाग्रता, सटीक स्ट्रोक्स और खुद पर पूरा काबू रखते हुए अपनी लीड को बनाए रखा और इतिहास रच डाला। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर प्रणवी अर्श के अर्श तक पहुंचने की कहानी साक्षी मंडवाल से।
1: प्रणवी ओर्स क्रिएटेड हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग द गोल्ड फॉर इंडिया द एशियन गेम्स 2026। प्रणवी, अदिति और दीक्षा आल्सो क्लेम द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स टीम इवेंट इन गोल्फ। नो इंडियन हैज वन एन इंडिविजुअल गोल्ड इन गोल्फ सिंस शिव कपूर इन 2002। द 24 ईयर ओल्ड लॉन्ग वेट फाइनली केम टू एन एंड विद प्रणवी ओर गेटिंग द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया द एशियन गेम्स 2026। प्रणवी ओर्स हेल्ड हर नर्व्स टू win the women's individual golf gold medal, finishing the 4-round competition at 15 under par. She made par on the final hole, as did Singapore's Shannon Tan and China's Jin Ruining, who finished on 14 under to share the silver medal. Aditi Ashok and Deeksha Dagar celebrated by dousing Pranavi with water on the course after a memorable victory. Let's remind all of you once again that Pranavi Urs, Aditi Ashok and Deeksha Dagar also claimed the silver medal in the women's team event in golf today.
0: लड़कियों का जादू तीरंदाजी में भी बना रहा, वो कथा तो सबको पता है, अर्जुन और मछली की आंख की। अमरावती महाराष्ट्र की 17 बरस की कुमकुम को भी लगता है बस टारगेट बोर्ड का सेंटर ही दिख रहा था। आज तीसरा पदक, वो भी व्यक्तिगत स्वर्ण पदक। कुमकुम के सनसनाते तीरों का बयान कर रही हैं मेघा।
2: Indian archery has signed off from the Asian Games with another historic performance, and at the center of it is 17-year-old Kumkum Anil Mohod. Kumkum clinched the gold in the women's individual recurve event, defeating South Korea's Oh Ye-jin in a dramatic shoot-off. With the scores tied at 5-all, the Indian teenager produced a perfect 10 while her opponent managed an 8. Earlier, Kumkum had defeated reigning world champion Kang Chaeyoung in the quarterfinals and China's Chu Xingyi in the semi finals. Her victory makes her the first Indian archer to win an individual recurve gold medal at the Asian Games. She's also secured an individual recurve quota place for India at the Los Angeles 2028 Olympics. And there was more to celebrate in the men's competition. Neeraj Chauhan defeated compatriot Dheeraj 6-4 in an all-Indian bronze medal contest. Neeraj fought back from 4-2 down to secure his place on the podium. For Kumkum, this was her third medal of the Games, following gold in women's recurve team event and silver in mixed team event. India's archery contingent finishes with 9 medals, 5 gold, 2 silver and 2 bronze, a campaign that underlines India's growing strength across both recurve and compound category.
0: पहलवानों ने भी भारतीय पदकों का ढेर बड़ा करने का बीड़ा उठा रखा था। आज 5 पहलवान थे, 2 रेसलर फाइनल में पहुंचे तो 2 कांस्य पदक के मैट पर। दाव पेंचों का सारा विवरण शाहिद आजमी से।
3: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय कुश्ती का अभियान शानदार अंदाज में समाप्त हुआ। भारत ने कुश्ती में कुल 6 पदक अपने नाम किए, जिनमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। इनमें सबसे बड़ी उपलब्धि रही अमन सहरावत की, जिन्होंने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। फाइनल में अमन का सामना उत्तर कोरिया के हान चोंग सोंग से हुआ। अमन ने मुकाबले की शुरुआत शानदार अंदाज में की और 4-1 की बढ़त बना ली। हालांकि चोंग सोंग ने वापसी करते हुए स्कोर 7-6 कर दिया। मुकाबले के आखिरी मिनट में रोमांच अपने चरम पर था। दबाव के इस दौर में अमन ने बेहतरीन टेकडाउन लगाकर 4 अंक हासिल किए और स्कोर 11-7 कर दिया। इसके बाद उन्होंने बढ़त कायम रखी और भारत के लिए स्वर्ण पदक

0: सुनिश्चित कर दिया। पूरे टूर्नामेंट में अमन का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा। उन्होंने जापान के यामातो ओगावा को 20-9 और कजाकिस्तान के नूरदानात एतानोव को 12-1 से हराया। सेमीफाइनल में 2-6 से पिछड़ने के बाद ताजिकिस्तान के एयाल बेलोबेउस्की के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए 14-8 से जीत दर्ज की। हांगझोउ एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाले अमन ने इस बार अपने पदक का रंग बदलकर स्वर्ण कर दिया। वहीं महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में अंतिम पंघाल ने रजत पदक जीता। फाइनल में उन्हें जापान की मोए क्योका से 1-9 से हार का सामना करना पड़ा। अंतिम ने क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की साकिब जमाल एसबोसिनोवा को 8-0 से और सेमीफाइनल में चीन की जिन जांग को 6-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। इस रजत के साथ अंतिम ने एशियन गेम्स में अपना दूसरा पदक हासिल कर लिया। आपको बता दें हांगझोउ में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। उधर पुरुषों के 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल में दीपक पुनिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक मुकाबले में दीपक ने मंगोलिया के गंगखुया गनबातार को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में 8-9 की करीबी हार के बाद दीपक ने शानदार वापसी की और लगातार दूसरे एशियन गेम्स में पदक जीतने का सिलसिला कायम रखा। हालांकि 74 किलोग्राम वर्ग में सागर जगलान कांस्य पदक से चूक गए। उन्हें कजाकिस्तान के नुरकोजा कैपानोव ने 5-0 से हराया और सागर चौथे स्थान पर रहे। इससे पहले रेपेचाज में उन्होंने उज्बेकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन रजामबेक जमालोव को 7-3 से हराकर कांस्य पदक मुकाबले में जगह बनाई थी। महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में मनीषा क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, जहां उन्हें जापान की अकारी फुजिनामी से 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। इस तरह भारतीय कुश्ती ने कुल 6 पदक के साथ अपना अभियान पूरा किया। आपको बता दें पिछले एशियन गेम्स में भारतीय पहलवानों ने 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज समेत कुल 6 पदक जीते थे।
1: वॉलीबॉल में 5वें-6ठे स्थान के लिए भारत की भिड़ंत थी थाईलैंड से। कड़ा मुकाबला हुआ, 5 सेट तक चला। सेट पॉइंट्स की कहानी प्रेरणा शर्मा से।
2: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम को 5वें स्थान के मुकाबले में थाईलैंड के खिलाफ 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। करीब 1 घंटे 56 मिनट तक चले इस 5 सेट के रोमांचक मुकाबले में थाईलैंड ने निर्णायक सेट 17-15 से जीतकर 5वां स्थान हासिल किया, जबकि भारत 6ठे स्थान पर रहा। मुकाबले की शुरुआत थाईलैंड ने बेहतर तरीके से की। उसने पहला सेट 25-19 से अपने नाम किया। भारत ने हालांकि दूसरे सेट में तुरंत वापसी की और 25-17 से जीत दर्ज करते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। तीसरे सेट में थाईलैंड ने फिर बढ़त हासिल की और 25-21 से सेट जीतकर मुकाबले में 2-1 की बढ़त बना ली। भारत के सामने अब मुकाबला बचाने की चुनौती थी और टीम ने 4थे सेट में एक बार फिर दमदार वापसी की। भारत ने यह सेट 25-17 से जीता और मुकाबला 2-2 की बराबरी पर पहुंच गया। इसके बाद फैसला 5वें और निर्णायक सेट में होना था। यहां दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक के लिए कड़ा संघर्ष देखने को मिला। भारत के पास मैच पॉइंट के मौके भी आए, लेकिन टीम उन्हें जीत में बदल नहीं सकी। थाईलैंड ने आखिरी पलों में धैर्य बनाए रखा और निर्णायक सेट 17-15 से अपने नाम कर लिया।
1: रग्बी सेवन में भी महिलाएं क्लासिफिकेशन रैंक के लिए खेल रही थी। 2 मैच खेले, दोनों का विवरण साक्षी मंडवाल से।
3: Indian women defeated Singapore for the 5th to 8th placing 22-5. India won the first half convincingly and commandingly by defeating Singapore 17-5 and also owned the second half by completely demolishing Singapore 5-0, thereby winning the match in straight games 2-0. The Indian women's match in rugby sevens for the 5th, 6th placing later happened with Kazakhstan, in which Kazakhstan easily defeated India 20-0. Both the halves went to Kazakhstan with the scoreline reading 10-0, 10-0 and finally, the Indian women finished on the 6th place.
1: ताइक्वांडो में 2 लड़कियां थीं। कल से संघर्ष में जुटी हुई कशिश मलिक और दूसरी ज्योति यादव। पदक की उम्मीद तो कम ही थी, लेकिन संघर्ष की उम्मीद जरूर थी। हुआ क्या, जानते हैं साक्षी मंडवाल से।
3: कशिश मलिक बोर्ड आउट ऑफ द वुमेन्स 56 केजी राउंड ऑफ 16 इवेंट एट द एशियन गेम्स 2026 इन ताइक्वांडो। शी वाज डिफीटेड बाय किम यूजन ऑफ साउथ कोरिया इन दिस राउंड। इन द वुमेन्स 67 किलोग्राम राउंड ऑफ 16 इन ताइक्वांडो, ज्योति यादव लॉस्ट टू कैनलक 0-2। शी वाज दस नॉक्ड आउट एंड इंडियाज कैंपेन इन द स्पोर्ट एंडेड विद दिस लॉस।
1: सेलिंग में भारत ने 3 पदक पाए हैं। आज गर्ल्स डिंगी में माही वर्मा थी। माही की नाव कितना भागी, जानते हैं मेघा से।
4: In sailing, 16-year-old Mahi Verma finished 6th overall in the girls dinghy event as the competition concluded today. Mahi completed the 12-race opening series with 75 total points and 57 net points. She finished 8th in opening series race 12.
1: और अब भारत के लिहाज से पदक तालिका की फाइनल स्थिति।
4: Courtesy of a

0: great surge that saw them add 9 medals, including 5 gold, India signed off the day in 4th place with 85 medals, 21 gold, 27 silver and 37 bronze. India and Uzbekistan at the moment stand level on 21 gold medals, but India are on the 4th place thanks to their higher silver medal count. China finish on top of the table, followed by host Japan and South Korea.
1: आज सही अवसर है भारत को मिले पदकों की स्थिति पर एक विहंगम दृष्टि डालने का। कहीं उम्मीदें पूरी हुई, कहीं उम्मीद से कम रहे तो कहीं उम्मीद से बढ़कर आए। भारतीय पदकों की विवेचना मेघा से।
0: Beyond the medals and the final standings, one of the biggest positives for India at these Asian Games has been the emergence of a new generation. Of the 310 athletes making their Asian Games debut, 83 have won medals, 43 women and 40 men. That means more than one in every four Indian debutants has returned with a medal. Between them, these first-timers have contributed 41 medals across 12 sports, 14 gold, 12 silver and 15 bronze. And several performances have broken new ground for India. Suchika Thariyal won India's first ever Asian Games medal in mixed martial arts, taking bronze in the women's traditional 60 kg category. Jay Meena's men's singles bronze gave India its first ever medal in soft tennis. Shooting produced several breakthroughs as well. India won its first ever women's team and mixed team medals in skeet, while Suruchi Singh and Kamaljeet Singh struck gold with an Asian Games record in the 10-meter air pistol mixed team. Neeru Dhanda and Kanan Chennai added another first, winning India's maiden mixed trap gold with an Asian Games record in the final. There were significant firsts elsewhere as well. Satnam Singh and Salman Khan delivered India's first ever Asian Games medal in the men's double sculls, while Baranika Alangova's bronze was India's first ever Asian Games medal in pole vault. In squash, Anahat Singh became the first Indian woman to reach the Asian Games singles final, eventually taking silver. And Indian archery reached another landmark. Ankita Bhakat, Kumkum Mohod and Kirti Sharma won India's first women's recurve team gold at the Asian Games. Kumkum followed it up today with individual recurve gold, becoming the first Indian archer to win an individual recurve title at the Asian Games. There were breakthroughs in sailing and boxing as well. Netra Kumaran claimed bronze in women's dinghy, while Lovlina Borgohain delivered India's first Asian Games gold in the women's 75 kg boxing category. Netra's bronze was a maiden Asian Games medal in a fourth appearance. There were milestones beyond first. Mirabai Chanu's silver ended India's 28-year wait for an Asian Games medal in weightlifting. Savan Barwal brought India its first men's marathon medal in 44 years. And the women's hockey team reclaimed Asian Games gold after a 44-year wait.
1: करीब दो सप्ताह तक एशिया की सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतिभाएं आईची नगोया में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन की नई कहानियां रचने में लगी रहीं, बेहतर से और बेहतर होने की कोशिश करती रहीं। जो नहीं जीत पाए उनके लिए उदास होने का समय तो हो सकता है, लेकिन निराश होने का नहीं, क्योंकि खेलों का संदेश ही यही है, कल आप फिर ऊपर आ सकते हैं। और फिर विशाल एशिया की बहुरंगी संस्कृतियों का मिलन स्थल भी तो था ये। भारत ने अपनी बहुआयामी सांस्कृतिक छाप भी जरूर ही छोड़ी। अब कल इन खेलों के अवसान का दिवस है। नगोया के पालोमा मिजुहो पार्क स्टेडियम में भव्य रंगारंग समापन समारोह होगा, लेकिन ये खेल आंदोलन तो शाश्वत है, चलता ही रहेगा। खेल ज्योति विदा लेगी। खेलों को सांकेतिक रूप से दोहा, जो 2030 खेलों का आयोजक है, उसे हैंडओवर किया जाएगा। जापान खासकर आईची नगोया की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को दिखाते हुए कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, समापन उद्घोष होगा और सारे खिलाड़ी एक मेक होते हुए एक दूसरे को गलबहियां डालकर विदा देंगे, चमकती आंखों में भविष्य के प्रदर्शन के सुनहरे सपनों के साथ। समापन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी 2 स्वर्ण और 1 रजत जीतने वाली शूटर नीरू ढांडा, जिन्हें खास तौर पर फिर जापान भेजा जा रहा है भारतीय दल का ध्वजवाहक बनने। तो उम्मीद करते हैं आपने आकाशवाणी पर हर दिन हमारे इस कार्यक्रम का आनंद लिया होगा, पसंद किया होगा। कल इस श्रृंखला के अंतिम कार्यक्रम के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक मुझे अनुपम पाठक को आज्ञा दें, शुभ रात्रि। एडिटर विशाल कुमार और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।